0: कार्यक्रम दुलाहाई
1: liveFM.lk
2: देवल पिटियट कमुरु पिटियट नावल पिटियट कल पिटियट www.livefm.lk